0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: दुनिया को जीतने की बहुत कोशिश करते हैं और इस जद्दोजहद में खुद को हार जाते हैं। भीड़ में अपनी एक अलग जगह बनाने की दौड़ में पता नहीं किसी के करीब होते हैं कि नहीं, पर हाँ, खुद से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए एक बैलेंस बनाए रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बैलेंस अपनी पर्सनालिटी में प्योरिटी और मैच्योरिटी का।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: एक बहुत इंटरेस्टिंग टेल है रिलेटेड टू द पर्सन हुम वी ऑल टेंड टू इग्नोर एट ऑल द टाइम्स बिकॉज वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. मैं बात कर रही हूँ माँ की. कहते हैं जब गॉड माँ को बना रहे थे तो बहुत ओवर टाइम किया. किसी एंजल ने उनसे आकर पूछा कि इतना टाइम इस मूरत पर काम क्यों कर रहे हैं, तो गॉड का आंसर था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि ये इलास्टिक या प्लास्टिक की नहीं है. शी विल बी एबल टू रन ऑन ब्लैक कॉफी एंड लेफ्ट ओवर्स. एक गोद है जिसमें एक साथ बहुत से बच्चे छुप सकते हैं, और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको मुझे देनी है 3 pairs of eyes. वेल, बात यहीं खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ट्रैक्स.

एक पेंसिल मेकर ने पेंसिल को तैयार कर डिब्बे में डालने से पहले उसे कुछ यूं समझाया कि मैं तुम्हें यानी पेंसिल को दुनिया में भेज रहा हूँ, बट कुछ चीजें हमेशा याद रखना। पहली कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत से अच्छे काम कर सकती हो। दूसरी, वक्त बेवक्त जब तुम्हें शार्पन किया जाएगा तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन वो पेन तुम्हें एक बेटर पेंसिल बनाएगा। और तीसरा कि चाहे तुम्हें किसी भी सरफेस पर चलाया जाए, तुम अपना मार्क जरूर छोड़ना और हालात जो भी हो तुम लिखते रहना।

पेंसिल की जगह पर जरा खुद को रखकर देखें। हर इंसान बहुत पावरफुल है, हर इंसान में एक क्षमता है बहुत से अच्छे काम करने की, जस्ट लाइक अ पेंसिल। शार्पनर की तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स आप पर आती हैं टाइम टू टाइम, बट लाइफ के ये टेस्ट आपको एक बेहतर इंसान बनाकर जाते हैं। और एंड में रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हालात कुछ भी हो, अपनी ड्यूटीज को हमेशा निभाते रहें। पेंसिल की इस कहानी से सीखें और जानें कि आप भी बेहद खास हैं और ये लाइफ आपको मिली है एक खास मकसद के लिए।

बहुत प्यार करता है. माय गॉड लुक हाउ क्यूट, हाउ क्यूट. वैसे व्यक्ति रोहित को बिल्कुल पसंद है कि तुम उसके करीब जाओ. चलो यार, मतलब जॉय.

कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद। रोज मिलना, रोज बातें करना सिर्फ ये प्यार नहीं, प्यार का मतलब तो इससे बहुत गहरा, बहुत डीप है। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, पर अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। मुझे खुशी में ना साथ रखो, बस अपना शरीक है गम कर लो। यूं अकेले बहुत तन्हा तुम हो। दोस्तों और अपनों से आज के दौर में वफा की उम्मीदें, अच्छा बताओ किस जमाने के आदमी तुम हो। लम्हे गुजरे, वक्त बीता, पर ये दिल किसी और का ना हो सका। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, पर मेरी आंखों में आज भी तुम हो।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: एक उम्र ऐसी आती है जब मन साथ जाता है, जब भी कोई चेहरा पास से गुजरता है तो मन भागना शुरू कर देता है, ख्वाब बुनने शुरू कर देता है कि शायद मेरा जीवन साथी ऐसा हो। हम सफर की वो तलाश बहुत लंबी चलती है, द परफेक्ट पर्सन की खोज, और उसमें चाहते हैं हम वो सब गुण, वो सब क्वालिटीज जो शायद इतनी आसानी से एक इंसान में मिल पाना मुश्किल लगता है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਨਾ ਵੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੈਸਾ ਹੋ मुझे तलाश है उसकी जो एक आम इंसान मेरे जैसा हो मेरे खुलूस को जो पहचानता हो बस काफी है वो कोई भी हो कहीं भी हो कैसा भी हो अगर कभी रूठ जाऊं तो मुस्कुरा कर मनाए वो ऐसा हो कि अगर बात कहे तो निभा कर दिखाए इरादों में वो अपनी चट्टानों जैसा हो दुखों में हंसने का हुनर भी जानता हो जो ख्वाब देने को कादिर हो मेरी आंखों को मेरी मोहब्बत को पहचान सके वो ऐसा हो

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: हर सपना साकार होगा, बस ख्वाबों को हकीकत में बदल कर तो देख। पिंजरे की सलाखों में है उड़ने की राह भी, गुलामी को बगावत में बदल कर तो देख। खुद ब खुद कल होंगी जिंदगी की मुश्किलें हल, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। अंधेरी राहों में चमकेगी सूरज की रोशनी, अंगूठे को दस्तखत में बदल कर तो देख। कदमों के तले खुद होगी मंजिलें तेरी, मेरी बातों को नसीहत में बदल कर तो देख। हौसला कम ना होगा तेरा तूफान के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख।

0: चलो कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं।